0: चल गए रा
1: क्या बोले
0: चल गए चल गए
1: क्या
0: चल गए
2: beda masa satu rasa sukun spesial baru.